मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026, प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटेल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेविये बेटेल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, जब मनुष्य के हृदय में आस्था का दीप जलता है तो जीवन की हर राह प्रकाशवान हो जाती है। मर्यादा, सत्य, प्रेम और करुणा के प्रतीक प्रभु श्री राम केवल मंदिरों और तीर्थों में ही नहीं बल्कि हर प्राणी के हृदय और इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। राम को केवल पूजा में नहीं बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों में भी उतारा जाए। जब हृदय में राम हो, मन में राम हो और जीवन के प्रत्येक क्षण में राम का स्मरण हो तो मनुष्य का जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये भजन।

बाल रूप में भगवान श्री राम की छवि सबसे मनमोहक और वात्सल्य से भरी अभिव्यक्तियों में से एक है। नन्हे रामचंद्र के चरणों में बंधी पैजनियों की मधुर रुंझुन, उनकी भोली चितवन और ठुमक ठुमक कर चलने की मनमाहन अदा मानो अयोध्या के राजमहल में स्वयं आनंद और उल्लास उतर आया हो। आइए सुनते हैं ये भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, जब जीवन की राह में मनुष्य स्वयं को असहाय महसूस करता है, जब संसार की चकाचौंध के बीच मन के सच्चे सहारे की तलाश होती है, तब इंसान उस परम शक्ति की शरण में जाता है जो हर पल उसके साथ रहती है। गुरुवाणी हमें यह विश्वास देती है कि सच्चे मन से गुरु और परमात्मा की शरण ग्रहण करने से मन को शांति, धैर्य और जीवन को सही दिशा मिलती है। समर्पण की यही भावना मन के अहंकार को दूर कर उसे प्रभु के प्रेम से जोड़ती है। आइए सुनते हैं भाई मनमोहन सिंह के स्वर में ये शब्द।

मोहब्बत जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो दिल की हर धड़कन में अपने महबूब की याद बस जाती है। और जब ये मोहब्बत नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से हो जाए तो अल्फाज भी इबादत का रूप ले लेते हैं। नात पाक उसी अकीदत और मोहब्बत के खूबसूरत अभिव्यक्ति है जिसमें आशिक रसूल अपने दिल की कैफियत को बड़े अदब और एहतराम के साथ बयां करता है। कुछ पाने की तमन्ना नहीं, बस उनकी याद, उनकी रहमत और उनकी निगाह करम की उम्मीद ही दिल को सुकून देती है। आइए सुनते हैं सनवर अली खां और साथियों के स्वर में ये नात।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सनवर अली खां और साथियों के स्वर में ये नात। आज मंगलवार है और संकट मोचन हनुमान जी की आराधना का दिन। आज के इस वंदना कार्यक्रम का समापन करेंगे हरिहरन के स्वर में इस भजन से।
1: हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान है।

आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और अनुराधा पोडवाल के स्वर में श्रीराम चरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीत सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: सुख की लालसा से ही मन भटकता है कि कहां सुख मिलेगा। तुम स्थिर बैठ जाओगे तो मन ठीक है ही, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। मन और विचार एक हैं, अलग नहीं हैं, क्योंकि मन से ही विचार आते हैं। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाएगा। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपना स्वरूप नहीं देख पाते। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ कुछ समय के लिए रहता है तब उसके जाने पर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि आप इस दौरान उस व्यक्ति से बंध गए। आप जब ज्ञान में उतर जाओगे तो पता चलेगा कि आप न बंधते हैं न ही दुखी होते हैं। मन हमेशा नीचे की ओर जाता है, गलत कामों और विषय वासनाओं में। मन को मारो नहीं, सुधारो, साफ करो। जब मन साफ होता है तो भक्ति, निष्ठा और प्रेम का उदय होता है। प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है, घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रेम अनुभव की चीज नहीं है, वो स्वयं अपने आप में है। जब आप किसी से मिलते हो, मिलते ही खूब हंसते हो, खुश होते हो। इसके लिए आपने कोई प्रयत्न तो नहीं किया, ये अनुभव हुआ या अपने आप हुआ? प्रेम मांगने से कम होता है, देने से बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। देखने से, मिलने से प्रेम होता है। प्रेम से प्यार हो जाता है, प्यार से त्याग हो जाता है और फिर त्याग ज्ञान में बदल जाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसका हर काम, हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। प्रेम व्यक्ति से मत करो, उसके आत्मा से, चेतना से करो। व्यक्ति से प्रेम करोगे तो आसक्त हो जाओगे, उलझन पैदा होगी और फिर उलझ जाओगे। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। परमात्मा ने बहुत प्रेम दिया है, जितना बांटते हैं उससे 10 गुना बढ़ता है। ज्ञान और प्रेम के रास्ते में चलने से ऐसा देखने में आया है कि जो इस रास्ते को अपनाता है वो आनंद, प्रेम और खुशी पाता है। प्रेम में डूब जाना ही जीवन है। प्रेममय हो जाओ। मनुष्य का प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है। ये न घटता है न ही बढ़ता है। ये उसी प्रकार है जैसे पानी का स्वभाव है शीतल रहना।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। श्रोताओं, हम आपको बताते हैं कि आज रात्रि 9:30 पर विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर विशेष रूपक प्रसारित किया जाएगा। उजाले साक्षरता के इसकी लेखिका है सुरभि पुरोहित, वाचन स्वर है जसवंत सिंह और रेणु राजपूत का, प्रस्तुत सहयोग यशोधर डबराल और प्रस्तुतकर्ता है शोभित शर्मा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है काव्यधारा। काव्यधारा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नेमपाल सिंह का काव्य पाठ।
2: कुछ व्यंग रचनाओं से आपको परिचित करा रहा हूं। सबसे पहली रचना है गट्टा। हथेली और गट्टे का कितना नजदीकी पड़ोस है, लेकिन अफसोस है कि दोनों के गुण धर्म कर्म और स्वभाव में बहुत बड़ा फर्क है। हथेली का तर्क है कि उसकी आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच भाग्य बंद रहता है, जबकि गट्टा इसके विपरीत कहता है। ये रेखाएं तो उसके बल पर बनती बिगड़ती हैं। आपने देखा होगा हथेली अपनी पांचों उंगलियों के साथ जब सामने वाले के मुंह पर पड़ती हैं तो उसके पीछे भी गट्टे का ही हाथ होता है। हमने माना हथेली और गट्टे का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन दोस्त जब भी मुड़ी हथेली ही मुड़ी, गट्टा कभी नहीं मुड़ा। इसलिए जो हथेली से जुड़ा भीरू और जो गट्टे से जुड़ा निर्भीक और स्वाभिमानी होता है, गट्टा अपने आप में संपूर्ण कार्रवाई की पेशानी होता है। गट्टे में वो दम है कि सोए भाग्य को जगा दे, चाहे तो हथेली पर सरसों उगा दे। इसलिए दोस्त हथेली की इन रेखाओं का चक्कर छोड़ो और हो सके तो खुद को गट्टे से जोड़ो। उसी से जुड़ा है तुम्हारा भाग्य, उसी से जुड़ा है तुम्हारा भाग्य। अगली कविता ताल से आप जुड़े, आपको अच्छा लगेगा। कथात्मक नुमा कविता है यह। ताल भी कमाल की बला है, वैसे ताल लगाना भी अपने आप में कला है। जो इस कला में माहिर है साफ जाहिर है कि वह बड़ा खिलाड़ी है, वरना अनाड़ी है। ताल लग जाती है तो किस्मत जग जाती है, और ताल टूटती है तो किस्मत फूटती है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी इसकी ताजा मिसाल है, और श्री फला को अपनी ताल टूटने का मलाल है। बहरहाल ताल तो ताल है। एक बार एक गिदड़ के हाथ शेर की खाल लग गई, उसने उसे ओढ़ा और जंगल का राजा बन बैठा, यानी उसकी ताल लग गई। अब गिदड़ की क्या औकात है, लेकिन ताल की बात है। जो लग गई सो लग रही, भले ही कुछ दिनों के लिए सही। आज लोग औरों की ताल से तो त्रस्त हैं और अपनी ताल लगाने में व्यस्त हैं। मैं भी आपको कविता कहाँ सुना रहा हूँ, बस ताल लगा रहा हूँ। ताल के साथ सुर को जैसे उठाया गिराया जाता है, कुछ ऐसा ही चरित्र हमारे कुछ लोगों का भी पाया जाता है। लेकिन ताल और सुर में एक तालमेल होता है जो हंसी खेल नहीं है, जबकि कुछ लोगों का चरित्र से कोई तालमेल नहीं है। खैर छोड़ो, इन लोगों की बात छोड़ो और इस ताल को अब घर की ओर मोड़ो और बताओ कि घर में तुम्हारी ताल कैसी लग रही है। बहरहाल अपने अपने बूते पर, ढोलची ढोल पर, मोची जूते पर, पंडित प्रपंच पर, कवि मंच पर, लेखक आयोजक से, संयोजक प्रकाशक से, मालिक किसी और से, सिपाही चोर से, चूहा बोरी में, चोर चोरी में, बाबू दफ्तर में, नौकर घर में, अपनी अपनी ताल लगाने की फिराक में है। बहरहाल अपने अपने बूते पर, ढोलची ढोल पर, मोची जूते पर, कवि मंच पर, पंडित प्रपंच पर, संयोजक आयोजक से, लेखक किसी और से, मालिक किसी और से, लेखक प्रकाशक से, सिपाही चोर से, चूहा बोरी में, चोर चोरी में, बाबू दफ्तर में, नौकर घर में, अपनी अपनी ताल लगाने की फिराक में है। यह ताल और बस ताल सबके दिलो दिमाग में है। सबके आगे ताल का ही सवाल है। ताल किनारे मछेरा मछलियों की ताल में बैठा है। बहेली की ताल लगी तो उसने अपना जाल समेटा है। मदारी और जमोरे की ताल उनका मजमा है, और सेठ जी की ताल हाजमा है। अब ताल पर सेठ जी के हसाल पर आप कहेंगे सरेआम कि सेठ जी का पेट पेट है या गोदाम। तो मित्रों सीधी सी बात है कि जब हाजमा बढ़ जाता है तो पेट के आगे गोदाम भी छोटा पड़ जाता है। पेट में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। दाढ़ी होती है, रहस्य छुपते हैं, बात खपती है जिससे आदमी की औकात नपती है। पेट में पाप होता है, पेट का इतना बड़ा ग्राफ होता है कि जिंदगी भर के लिए आदमी उसमें फंस जाता है। और ताल लगे तो आदमी आदमी के पेट में जूतों समेत घुस जाता है। पेट में आग है, पानी है, पेट की विचित्र कहानी है जो कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, तो कभी तमतमा जाती है। ताल लग जाए तो दो चार लोगों की बात ही क्या, पूरी दुनिया भी पेट में समा जाती है। ताल लग जाए तो दो चार लोगों की बात ही क्या,

0: पूरी दुनिया भी इस पेट में समा जाती है। इन तालों से कई सालों से कई सालों से हम भी ताल लगाने की ताल में हैं, नहीं लगी तो इस हाल में हैं कि बस ताल ठोक रहे हैं, महंगाई की मार से जरूरतों की आंच पर पेट के लिए भार झोंक रहे हैं, कविता लिख रहे हैं और आपको बेताल दिख रहे हैं, आपको बेताल दिख रहे हैं। इसी वर्णनात्मक शैली में एक और कविता पेश कर रहा हूं। जमूरा जमीन पर पड़ा है, ऊपर काला कपड़ा है जिससे पूरी काया ढकी है, उस पर लोगों की टकटकी है, गर्दन में तलवार धसी है जिससे सिर और धड़ अलग अलग हो गए हैं, लोग सहमे हुए हैं, इस तमाशे में खो गए हैं। जमूरा जमीन पर पड़ा है, ऊपर काला कपड़ा है जिससे पूरी काया ढकी है, उस पर लोगों की टकटकी है, गर्दन में तलवार धसी है जिससे सिर और पैर धड़ अलग अलग हो गए हैं, लोग सहमे हुए हैं, इस तमाशे में खो गए हैं। मदारी डमरू बजाते हुए बोला, अरे भोला जी हजूर, क्या देख रहा है? इस हाल के लिए जिसने किया मजबूर, बस उस रोटी को देख रहा हूँ हुजूर। फिलहाल रोटी की बात छोड़ और ख्याल को इधर मोड़, और बता इन कुर्ता धोती वाले सज्जन के मन में क्या है? उस्ताद, इनके लिए आपका पहले ही संबोधन गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि सज्जन है? अबे खेल की बात है, खेल मत बिगाड़, फिर से मत कर खिलवाड़, अपनी औकात में रहे और इन सज्जन को सज्जन ही कहे। ये बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े दाता हैं, हम जैसा खेल तमाशे वाला इनसे बहुत कुछ पाता है, तुझे भी जरूर मिलेगा। बोल, 100 का नोट चलेगा? नोट तो हुजूर 2000 के भी चल रहे हैं, जिन्हें अपनी जेब में मसल रहे हैं उनके बीच से 100 का नोट निकाल रहे हैं और देखो मेरी तरफ उछाल रहे हैं। और सचमुच 100 का नोट जमूरे की तरफ उछाला गया, जिसे मदारी द्वारा संभाला गया, मारे खुशी के झूमा, उनके सम्मान में डुगडुगी बजाई और लोगों से ताले बजवाई और फिर बोला, मेरे भोले बच्चे, देख लिया नमूना? अब इस नमूने को करना है दूना चारू चौगुना। इधर आ और बता इन महाशय के मन में क्या है? उस्ताद, क्या बताऊं, ये महाशय सोच रहे हैं कि तमाशा खत्म हो तो बिना कुछ दिए खिसक जाऊं। ऐसा न बोल उल्लू की औलाद, और बस तमाशे को साध। अच्छा साधा, पूरा की आधा पूरा, शाबाश जमूरा, अब आगे बढ़ और इनकी शान में कुछ कसीदे पढ़। दया धर्म के नाम पर देंगे, बहुत कुछ देंगे हुजूर। दया धर्म संवेदना जैसी इनके पास कोई चीज नहीं है। मदारी गुस्से में बोला, तुझे खेल तमाशे की तमीज नहीं है, लाइन पर आ और बकवास बंद। हुजूर, मैं तो बकवास की ही खाता हूँ, बकवास ही ओढ़ता बिछाता हूँ, अपने आप में खुद बकवास हूँ, सड़क पर पैदा हुआ, सड़क पर पड़ा हूँ, बकवास से भी कुछ बड़ा हूँ। बेटा, लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा खास है, देखने वालों की इच्छा में छुपी हमारी भी आस है, उस आस को मत तोड़ और खुद को उनकी जेब से जोड़। अच्छा जोड़ा, शाबाश, और अब बता इन भद्र दिखने वाले पुरुष की जेब में क्या है? उस्ताद, इनकी जेब जेब नहीं, अपने आप में कमाल है, उसमें एक तरफ झटके का माल है, दूसरी तरफ कुछ मुस्टंडे रंग रेलियां मना रहे हैं, तीसरी तरफ कुछ चमचे पानी भर रहे हैं, किसी इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकी जेब जेब नहीं, अपने आप में मिसाल है, दस्तावेज है, इनकी दशो दिशाएं लबरेज है। लगता है उतरा नहीं है तेरे सच का नशा, तू खेल बिगाड़ कर रहेगा और मैं तेरी दशा। हुजूर, इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ पाओगे? जो आप दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मेरी दिशा और दशा 54-58 रुपया है, जिन्हें लोग मेरी तरफ फेंक रहे हैं, इसी के लिए मुझे रोज रोज डांटा जाता है, बार बार दो टुकड़ों में बांटा जाता है और मैं बट जाता हूँ, पेट की खातिर कट जाता हूँ। आपके हुनर पर यह पेट पलता है हुजूर, लेकिन हुजूर एक बात बताओ, आपका यह हुनर गर्दन के बजाय इस पेट पर क्यों नहीं चलता है? आपका हुनर इस पेट के बजाय गर्दन पर क्यों नहीं चलता है? अगर यह पेट तन से अलग हो जाए तो इस रोज रोज के मरने जीने से निजात पाए। सच कहता हूँ, जब एक दिन में कई कई बार मरता हूँ, जिंदा होता हूँ तो इस पेट से अपने आप से बहुत शर्मिंदा होता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। एक और कविता, फाकों में ईद। इतनी जल्दी जल्दी आटा नून तेल हल्दी के बढ़ रहे हैं भाव, कि तवे और चूल्हे के बीच का मनमुटाव, पेट बखूबी भाप रहा है, होरी हाँप रहा। इतनी जल्दी जल्दी आटा नून तेल हल्दी के बढ़ रहे हैं भाव, कि तवे और चूल्हे के बीच का मनमुटाव, पेट बखूबी भाप रहा है, होरी हाँप रहा है। पतीली और चमचे में भी कई दिन से अनबन है, पतीली और चमचे में भी कई दिन से अनबन है, प्रात ने भी विरह दुख झेला, कई दिन से आटा उसकी गोद में नहीं खेला। वह बाट जो रही है, धनिया घर में कुछ टहो रही है और खींच रही है, अंदर ही अंदर छींच रही है, आग चूल्हे में नहीं पेट में है और गोबर पेट पीट रहा है। जी तोड़ मेहनत, कमर तोड़ महंगाई का मुंह तोड़ नहीं पा रही है, दीन से दीन माता दीन मजे में लीन, यानी बाढ़ के खेत को खा रही है। ऐसे में गोदान की उम्मीद, यानी फाकों में ईद। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी एक और कविता मैं दे रहा हूँ, अनुभव। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की चाह, याद है अखबारी विज्ञापनों पर टिकी होती थी निगाह, आज जब बेटी हो गई है सयानी, दोहराई जाने लगी फिर वही कहानी। वैवाहिक विज्ञापन, एक सुयोग्य वर की तलाश, दिनचर्या का खास अंग हो चुका है, यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हंसी मजाक, अब सबसे ध्यान भंग हो चुका है। अब तो डायरी के पन्नों पर कविता की जगह विज्ञापन में दिए गए जो पते हैं वे उतरते हैं, लेखन के नाम पर लिखे जाते हैं पत्र यत्र तत्र। यात्रा के नाम पर जाया जाता है प्रस्तावित सुयोग्य वर के शहर, पढ़ने पढ़वाने के नाम पर पढ़वाई जाती है बेटी, और सुनने के नाम पर सुना जाता है लंबाई कुछ कम है थोड़ा फैटी, एम ए है साइंस एड से होती तो बेटर था, कॉलेज अच्छा को एजुकेशन है, दिल्ली वालों का भी यही मैटर था, को एजुकेशन में बच्चे के बिगड़ने के चांस होते हैं, आजकल के बच्चे बड़े एडवांस होते हैं। खैर छोड़ो और बजट पर आओ, थोड़ा और बढ़ाओ, बजट के बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती बात और ठाक पर फिर वही तीन पात, आगे चलते हैं बस कुछ पात्र बदलते हैं, संवाद वही दोहराए जाते हैं जिनसे कुछ और भाव निकल आते हैं, अब मेरी प्रकृति और स्वभाव भी समझौतावादी होने लगा है, यह सब सुनने कहने और झेलने का आदि होने लगा है, प्रेरणा के नाम पर संचित हो चुका है बहुत सारा अनुभव, सोचता हूँ 2 साल बाद बेटा अपना कोर्स पूरा कर नौकरी पा जाएगा तब यह सारा अनुभव मेरे बहुत काम आएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यधारा में नेमपाल सिंह का काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर 6:55 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
2: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्र बलानां युद्धाभियान क्षमतां वर्धयितुं रक्षा अधिग्रहण परिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षा मंत्रिणा राजनाथ सिंहेन 10,000,000,000 कोटि रूप्यकाणां प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिक वाहनानि, नौसेनायाः गैस टर्बाइन प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडार निरोधक यंत्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिक गमनागमनं यातायात सम्मर्द समस्याम् अपाकर्तुं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मंत्रिणः नंद गोपाल गुप्ता इत्यस्य सानिध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्री वाहन वाहनानि यात्री वाहनानि च पृथक पृथक मार्गैः यास्यन्ति। 75,100 मीटर विस्तृत मार्गेण गंगा एक्सप्रेस वे संपर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तर प्रदेशे नद्यः उत्तुंग स्तरे प्रवहन्ति, अनेन 25 मंडलेषु जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानां अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धार कार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधान नूतनाम औन्नत्यम नयन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलः लक्जमबर्ग उप प्रधानमंत्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मंत्रणाम अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः संभाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रेषु संयुक्त प्रकल्पानां आरंभाय सहमतिः संजाता, येन उभयतः वाणिज्यिक संपदां विस्तारः संभविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स सम्मेलनं भारत ईरान संबंधानां कृते नूतन दृष्टिं प्रदास्यति। ईरान विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन भारत प्रवासे द्विपक्षीय व्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीय वार्ता माध्यमेन मध्य पूर्व क्षेत्रे शान्तिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते। दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे 12 जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं 2 बालकौ 4 महिलाः समेत्य 11 जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अमृत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृत क्षेत्रे सैनिकानाम् उपरि ड्रोन आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान समर्थितस्य सशस्त्र समूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूल सौकर्याणि स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतंकिनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहासः रचितः। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानाम् उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुशियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमरीका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री

0: सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: संसार में जो भी वनस्पतियां हैं वे सभी विभिन्न प्रभावों और गुणों से युक्त हैं। इन वनस्पतियों के आकार प्रकार की विविधता, उनके रंग रूप तथा फूल पत्तों की मनमोहक छटा देखकर आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। वे सभी वनस्पतियां प्राणियों के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं। हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे या वनस्पतियां हैं वे आश्चर्यजनक गुणों से भरपूर हैं, जो विविध रोगों का निःशुल्क निवारण करती हैं। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे गुणों से भरपूर लौंग की। लौंग का उपयोग विशेष रूप से मसाले को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख शुद्धि के लिए तथा पान में भी किया जाता है। ये उत्तम घरेलू औषधि है। शीतल, पाचक और रुचिकारक गुणों के कारण कफ पित्त के रोगों, मूर्छा, वायु विकार, शूल, खांसी, श्वास, हिचकी आदि विकारों को भी नष्ट करती है। लोग इसे विविध रोगों में घरेलू नुस्खे के तौर पर प्रयोग करते हैं। आप भी सुनिए और लाभ उठाइए। लौंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में लेकर जल के साथ पीसकर दिन में 3 बार पीने से ज्वर नष्ट होता है। लौंग को जल के साथ पीसकर उसमें मिश्री डालकर पीने से हृदय की जलन शांत होती है। लौंग को जल के साथ पीसकर गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से बार बार लगने वाली प्यास कम हो जाती है और जी मिचलाने की शिकायत भी दूर होती है। खांसी में एक प्रयोग करके देखें। लौंग, काली मिर्च और बहेड़ा संभाग में लेकर उसमें उतने ही वजन का सफेद कत्था मिलाइए। इन सबको अच्छी तरह पीसकर बबूल की अंतरछाल के काढ़े में घोटिए, फिर उसकी चने के बराबर गोलियां बनाइए। ये गोली दिन में 2-3 बार मुख में रखकर चूसने से खांसी दूर होती है। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि लौंग के तेल को दांतों में लगाने से कीड़े नष्ट हो जाते हैं और दर्द से मुक्ति भी मिलती है। लौंग को पीसकर पानी में डालकर खूब उबालें। 8वां हिस्सा रह जाने पर उसे उतार लें। इस पानी को छानकर रोगी को पिलाने से उदर शूल यानी कि पेट दर्द, गैस विकार, अजीर्ण और हैजे में फायदा होता है। लौंग के तेल को 2-3 बूंद चीनी या बताशे में देने से हैजे की उल्टी दस्त में भी लाभ होता है। ये नुस्खा पेट दर्द तथा वायु विकार में भी लाभकारी है। लौंग और हल्दी को पानी के साथ पीसकर नासूर पर लेप करने से भी बहुत लाभ होता है। जोड़ों का दर्द होने पर लौंग के तेल को जोड़ों पर लगाएं, इससे दर्द में राहत मिलेगी। छोटे बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं, ऐसे में लौंग को पीसकर मधु के साथ चाटने से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। लौंग को जल के साथ निगलने से वायु नलियों का अवरोध नष्ट होता है और अवरोध के कारण उत्पन्न पीड़ा भी दूर हो जाती है। इससे मूत्र अवरोध से भी राहत मिलती है। इतने सारे औषधीय गुणों से भरपूर है लौंग, इसका सेवन कीजिए और लाभ उठाइए।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको जानकारी दी गई लौंग के बारे में। श्रोताओं, वास्तव में ये एक मसाले के तौर पर नहीं बल्कि इसके कई लाभ हैं। इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 हो रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें।
1: किसान भाइयों नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है मूंगफली की फसल में सामयिक कार्य। किसान भाइयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूंगफली खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। सितंबर माह मूंगफली की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय अधिकांश खेतों में फसल फूल आने, पैगिंग, फली बनने और दाना भरने की अवस्था में होती है। कुछ जल्दी बोई गई फसलें सितंबर के अंत तक पकने की अवस्था में भी पहुंच जाती हैं। इसलिए इस महीने किसान भाइयों को खेत में केवल सिंचाई या निराई गुड़ाई पर ही ध्यान नहीं देना बल्कि फसल की अवस्था देखकर नमी प्रबंधन, रोग कीट निगरानी, खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन, जल निकास, फली विकास और समय पर खुदाई की तैयारी जैसे कार्य करने चाहिए। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए सितंबर में सबसे पहले खेत में नमी पर ध्यान देना जरूरी है। मूंगफली की फसल में फूल आने, पैगिंग यानी सुई जैसी संरचनाओं के मिट्टी में जाने और फलियों के विकास की अवस्था पानी की कमी के प्रति संवेदनशील होती है। इसलिए यदि सितंबर में बारिश सामान्य नहीं है और खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई का निर्णय केवल कैलेंडर देखकर ना करें बल्कि खेत की मिट्टी की नमी और फसल की अवस्था देखकर करें। साथ ही मूंगफली में अधिक पानी भरना भी नुकसानदायक होता है, इसलिए सिंचाई के साथ साथ जल निकास की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के दौरान कई बार लगातार वर्षा हो जाती है। ऐसी स्थिति में खेत में पानी रुकने ना दें। मूंगफली की जड़ें लंबे समय तक पानी में रहने पर कमजोर हो जाती हैं और जड़ तथा तने से संबंधित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। खेत की मेड़ों और नालियों को खोलकर अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। विशेषकर भारी मिट्टी वाले खेतों में जल निकास का ध्यान अवश्य रखें। यदि खेत में पानी कई दिनों तक भरा रहता है तो पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती और पौधों की वृद्धि तथा फली विकास प्रभावित हो जाता है। सितंबर में खेत की नियमित निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाई सप्ताह में कम से कम 2 बार पूरे खेत का निरीक्षण करें। केवल खेत के किनारे देखकर कीट या रोग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बीज के हिस्से में जाकर पौधों की पत्तियों, तने, जड़ों के आसपास की मिट्टी और फलियों की स्थिति देख सकते हैं। कुछ पौधों को उखाड़कर भी देखें कि फलियां बन रही हैं या नहीं, फलियों का आकार कैसा है और उनमें दाने भरने की स्थिति कैसी है। साथ ही किसान भाइयों, इस महीने मूंगफली में टिक्का रोग यानी पत्ती धब्बा रोग की निगरानी विशेष रूप से हमें करनी चाहिए। इस रोग में पत्तियों पर भूरे या गहरे रंग के गोल धब्बे दिखाई दे सकते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां समय से पहले गिरने लगती हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता घट जाती है। किसान भाइयों, यदि खेत में पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे धब्बे दिखाई दें तो किसान भाई इसे सामान्य पीलापन समझकर नजरअंदाज ना करें। रोग की सही पहचान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें। रोग की स्थिति में अनुशंसित फफूंदनाशी का प्रयोग, स्थानीय कृषि विभाग या विशेषज्ञ की सलाह और लेबल पे दिए गए निर्देशों के अनुसार करें। किसान भाइयों, सितंबर में रतुओ रोग की भी निगरानी हमें करनी चाहिए। साथ ही मूंगफली में तनागलन, जड़गलन और अन्य फफूंद जनित रोगों पर भी नजर हमें रखनी चाहिए। यदि कुछ पौधे अचानक मुरझाए हुए दिखाई दें तो उनकी जड़ों के पास सड़न या तने के निचले हिस्से में फफूंद जैसी वृद्धि दिखाई दे तो ऐसे पौधे को ध्यान से जांचें। रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालकर उन्हें नष्ट कर दें। साथ ही किसान भाइयों, सितंबर में कीटों की निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मूंगफली में दीमक, सफेद गिंडार, पत्ती खाने वाली सुंडी, माहू, थ्रिप्स या अन्य कीट नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही सितंबर में खेत में खरपतवार नियंत्रण की स्थिति भी देखनी चाहिए। हालांकि मूंगफली की फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि खेत में अभी भी बड़े खरपतवार मौजूद हैं तो उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। इस समय खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्व और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही वे कई कीटों और रोगों के लिए आश्रय भी बन सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपनी मूंगफली में निगरानी बनाकर अच्छे से फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें। किसान भाइयों, नमस्कार।
0: किसान भाई अभी सुन रहे थे खेती की बातें। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों पर।

रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम का राज्य स्तरीय प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति रहेगी। रात्रि 9:30 पर विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर विशेष रूपक प्रसारित किया जाएगा, उजाले साक्षरता के। इसकी लेखिका सुरभि पुरोहित हैं और वाचन स्वर जसवंत सिंह और रेणु राजपूत का है। प्रस्तुत सहयोग यशोदा डबराल और प्रस्तुत करता है शोभित शर्मा। शाम 6:05 पर कृषि जगत में आप सुन सकते हैं बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। भेंटवार्ता के अंतर्गत बासमती धान का गुणवत्तायुक्त उत्पादन हेतु वैज्ञानिक सुझाव विषय पर BEDF निदेशक डॉक्टर रितेश शर्मा से बातचीत करेंगे सुवेंद्र सिंह। साथ ही चर्चा का विषय रहेगा सब्जियों की तुड़ाई में सावधानी और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा किसान वाणी, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। सुगम संगीत में आज संध्या 7:32 पर जगजीत सिंह की गाई गजलें सुनवाई जाएंगी। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की जानकारी देंगे। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, सक्षम महिला, सशक्त समाज। इसके साथ ही क्रम रहेंगे आधी आबादी से और कहानी पाठ, जिसमें बहने सुन सकती हैं सुमन चौधरी की कहानी अहमियत। 5:15 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी, जिसमें क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, दिल से दिल तक और कहानी के उस पार। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 7:18 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पीलीभीत में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से शारदा और देवहा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूरनपुर, सदर, कलीनगर और बीसलपुर तहसील क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बस सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर कल लखनऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यूपी रोडवेज और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बीच बस सेवाओं के विस्तार और नए मार्गों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच पहले से संचालित 25 मार्गों के अलावा बिहार ने 14 नए मार्गों पर परिवहन की बसों के संचालन का प्रस्ताव दिया है।
4: 25 रूटें पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के पहले से संचालित था और उसका एक्सटेंशन करने का बात थी 10 साल के लिए, और 14 नए रूट बिहार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। कुछ उसमें हम लोगों ने और भी अतिरिक्त रूट बढ़ाने के लिए कहा है। प्रतिदिन जो है लाखों लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आते हैं, लाखों लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाते हैं, तो सबके आवागमन की सुविधा रखना हम सबका दायित्व है। इस पर हम सब लोगों ने एक एक बिंदुओं पर निर्णय किया है।
2: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए सरकार ने यह पाबंदी हटाई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल वाराणसी से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बागपत में रविवार की मध्य रात्रि के बाद हुए एक सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा गांव टोल के पास तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। ADG मेरठ भानु भास्कर ने बताया कि हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया।
5: बहुत ही दुखद है और मृतकों एवं घायलों के परिवार के साथ परिजनों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम की लगातार बातचीत चल है। ये सभी लोग मूलतः जो है बदायूं जनपद के थे। राजस्थान में पूजा अर्चना के लिए 2 सितंबर को गए थे। 5 दिन बाद पूजा अर्चना पूरी करके वापस आ रहे थे तभी दुर्घटना हुई है। बदायूं प्रशासन बदायूं पुलिस जो है लगातार इनसे संपर्क में है और जितनी सुविधा मुहैया हो सकती है वो कराई जा रही है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में भी मुड़िया धुरे की गांव के पास कल देर शाम एक रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इसके लिए 1,50,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
6: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश के 6 शहरों ने स्थान बनाया। इनमें लखनऊ ने देश में पहला, आगरा ने 4था, गाजियाबाद ने 9वां, कानपुर ने 11वां, प्रयागराज ने 13वां और मेरठ ने 22वां स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की वार्ड लेवल रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। कैटेगरी 1 में राजधानी लखनऊ के वार्ड 70 ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कैटेगरी 2 में प्रयागराज के वार्ड 31 ने देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी, मुरादाबाद और नोएडा टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: लखनऊ में केरल के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एयर ब्रेक, फटीक टेस्टिंग तथा धातु एवं रसायन प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर अत्याधुनिक रेलवे प्रौद्योगिकियों और परीक्षण सुविधाओं की जानकारी ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसके निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज किया है। बेंगलुरु में कल उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
7: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है। बजट की कोई कमी नहीं है।
2: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अनुक्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 14 नए रूटों पर बसें चलाने की तैयारी। दोनों राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने लखनऊ में बैठक कर विस्तार से चर्चा की। बागपत में हुए सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में लखनऊ को मिला देश में पहला स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
8: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
9: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

श्रोताओं, सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और आज का अंक लेकर मैं हाजिर हूं आपका साथी विश्वास त्रिवेदी। दोस्तों, हर सुबह उगता सूरज न सिर्फ रोशनी फैलाता है बल्कि अपने साथ नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर भी आता है। सूरज की किरणों की तरह हमारे ये कार्यक्रम जानकारी का उजाला और मनोरंजन का रंग लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ उपयोगी जानकारी, जीवन से जुड़ी रोचक बातें, तिथि विशेष की और अखबारों की सुर्खियों की। तो आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं नए सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, हर वर्ष 8 सितंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है और शिक्षा का धन ही ऐसी पूंजी है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई सन 1966 में। कहा जाता है कि शिक्षा केवल पढ़ना लिखना और सीखने का नाम नहीं है बल्कि ये व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करने और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने या जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। वास्तव में शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो अज्ञानता से अंधकार की ओर ले जाता है, व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देता है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन बेहतर बना सकता है बल्कि वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के इस डिजिटल युग में केवल अक्षर ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और आधुनिक संचार माध्यमों की जानकारी भी जरूरी हो गई है। डिजिटल साक्षरता हमें बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम बनाती है। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हैं। और हमारा दायित्व है कि हम अपने आसपास के निरक्षर लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें, विशेष रूप से बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और आने वाली कई पीढ़ियां शिक्षित और जागरूक बनती हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि शिक्षा की रोशनी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। हम स्वयं भी सीखेंगे और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रहे, शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। एक शिक्षित समाज ही एक मजबूत, जागरूक और विकसित राष्ट्र की नींव बना सकता है। तो ये थी साक्षरता दिवस की कुछ बात। तो क्यों ना ऐसा ही कुछ चुलबुला सा गीत सुन लिया जाए, इससे संबंध भी रखता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म किताब से। आवाज़ें हैं शिवांगी पद्मनी की, गुलजार ने गीत लिखा है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

चश्मा पीले कान, अरे बिल्ली खाए जरदा पान, काला चश्मा पीले आहा।

0: बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप,

मच्छर की दो लंबी मूछें, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी।

0: बनिया धान
1: VIP अंदर भी है बनिया VIP।

देखो घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगरे से बट पर वॉट मतलब क्या? माथे रोज लगाए

तो अभी आपके मनोरंजन के लिए हमने आपको सुनवाया ये चुलबुला सा गीत। चलिए चलते हैं कुछ जानकारियों की ओर। श्रोताओं, आज 8 सितंबर है और हर वर्ष 8 सितंबर को विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी कहा जाता है। आज के समय में कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की समस्या, कंधे की जकड़न और मांसपेशियों से जुड़ी परेशानियां आम होती जा रही हैं। लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल और कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग तथा शारीरिक गतिविधियों की कमी भी अनेक समस्याओं का कारण बन जाती है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से उचित व्यायाम और फिजिकल थेरेपी बहुत लाभकारी होती है। फिजिकल थेरेपी स्वास्थ्य देखभाल की एक ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर की गति, मांसपेशियों की शक्ति और शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। फिजियोथेरेपी केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं है। दुर्घटना के बाद पुनर्वास, खेलों में लगी चोट, स्ट्रोक के बाद शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने और ऑपरेशन के बाद शरीर की सामान्य कार्य क्षमता वापस लाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी दर्द या शारीरिक समस्या में स्वयं उपचार करने के बजाय योग्य चिकित्सक और प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग-अलग होती है, इसलिए इंटरनेट या किसी दूसरे व्यक्ति के बताए व्यायाम को बिना विशेषज्ञ की सलाह के अपनाना उचित नहीं है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में शारीरिक सक्रियता को ध्यान दें और सही तरीके से बैठने और चलने की आदत अपनाएं तथा किसी भी शारीरिक समस्या को नज़रअंदाज ना करें। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सुखी और सक्रिय जीवन की आधारशिला है। सही देखभाल, नियमित गतिविधि और विशेषज्ञ की सलाह हमें बेहतर जीवन जीने में सहायता कर सकती है। ये तो हुई बात विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की। श्रोताओं, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। जीवन में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। ये है आज के इतिहास की बात, यानी 8 दिसंबर को क्या हुआ खास जो इतिहास में दर्ज हो गया। 8 सितंबर सन 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने सोवियत संघ के महत्वपूर्ण शहर लेनिनग्राद की घेराबंदी शुरू की। यह इतिहास की सबसे लंबी और भयावह सैन्य घेराबंदी में शामिल रही। लगभग 872 दिनों तक चली इस घेराबंदी ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। 8 सितंबर सन 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम और आत्मसमर्पण की घोषणा की गई। अमेरिकी जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने इसकी सार्वजनिक घोषणा

1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के मिश्र, माफ कीजिए, इटली के मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम और आत्मसमर्पण की घोषणा की गई। अमेरिकी जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने इसकी सार्वजनिक घोषणा